0: தொடர்வது ஆங்கில செய்திகள்.
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, "Government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately."
2: I know that the paper leak is not a ordinary issue. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 இல்ல கேட்டுட்டு இருக்கோம். இதே ராகம் அடுத்ததான் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில யாரு பாடலு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, பெரம்பலூர்ல இருந்து ராபின்சன், ரூபா, ரித்தின், ரெனிடா, ஜோசப், சசி, ஜூலி, பாக்யராஜ், தமிழ் மற்றும் யூஜின் கேட்டிருக்காங்க. எந்த படத்துல இருந்தா இட்லி கடை படத்துல இருந்து பாடல் வருது கேட்போம்.

0: इंडिया के ये नारे गूंजते सुनाई देंगे, क्योंकि आगाज हो चुका है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का। इंडिया
1: ओलंपिक जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा इज द बिग अट्रैक्शन। ही वन गोल्ड एट द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। बॉक्सर नोलिना बोर्गेन इज बैक एज वेल एंड ब्रिंग्स इन द बैटन। Three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanu carries the India flag. He won 61 medals last time in Birmingham, a long way from a single bronze at their first game in 1934.
2: 123 khiladi 10 alag alag khelon mein टीम इंडिया की जर्सी पहन तिरंगे को सबसे ऊपर लहराने का सपना लिए उतरेंगे और उनके साथ उतरेगी करोड़ों भारतीयों की प्रार्थनाएं, उम्मीदें और शुभकामनाएं।
0: अलग अलग भाषा वेशभूषा वाले सभी देशवासियों की धड़कन एक होगी। नीरज चोपड़ा का हर भाला जब आसमान की ओर जाएगा तो उसे देखने वाली निगाहें अलग अलग होंगी, लेकिन उम्मीद एक होगी।
2: लवलीना का हर पंच सिर्फ सामने वाले को पीछे नहीं धकेलेगा, शायद किसी छोटे शहर की लड़की को ये यकीन दिलाएगा कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं।
0: मीराबाई चानू जब वजन उठाएंगी तो सिर्फ बारबेल का वजन नहीं होगा, उसमें करोड़ों उम्मीदों का भार भी होगा और उसे उठता देखकर शायद हमें भी अपने कंधे थोड़े मजबूत लगेंगे। खेलों में मुकाबले अलग हो सकते हैं, लेकिन सपना एक है, अपने तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना।
2: हाँ, इस बार खेलों का दायरा कुछ सिमटा हुआ है। 2022 में बर्मिंगम में हुए संस्करण में जहाँ 19 खेल थे, तो वहीं इस बार सिर्फ 10 है। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, स्क्वाश और टेबल टेनिस जैसे वो तमाम खेल जिसमें भारत ने ढेरों पदक जीते, वो इस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है।
0: इसलिए कुल पदकों की संख्या कम होना तय है, और बता रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रतिनिधि हिमिका चौधरी।
3: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स है, हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा।
2: इसी साल जापान में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों के लिहाज से भी कॉमनवेल्थ गेम्स बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और भारत की महानतम धावकों में से एक पीटी उषा से बेहतर ये कौन जानता है।
4: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड। एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनीवे 2 months इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस। हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कॉम्पिटिशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी व्हाट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू डू, ऑल टीम विल बी देयर।
2: खेलों के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही भारत ने जश्न मनाने की पहली वजह हासिल कर ली है।
0: 2021 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना बोरोगेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, यानी एक मेडल तो कंफर्म्ड है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को टुवालू की तफाकी से होगा।
2: गुरुवार 23 जुलाई को भारत का अभियान लॉन बॉल से शुरू हुआ, वही खेल जिसने बर्मिंगम 2022 में भारतीय खेल इतिहास को एक नई पहचान दी थी। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने विमेन फोर्स में 2022 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, तो वहीं पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया था।
0: इस बार लॉन बॉल्स में ये इवेंट नहीं है, 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है। साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी, और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
5: It's a different format that the Commonwealth Games hosted for this year in the 2026 Birmingham was a grass green, and this Glasgow is indoor carpet. So we are going a few

0: 2 weeks ahead of the games in Britain for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
1: उसका असर देखने को मिला. विमेन पेयर्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने माल्टा को रोमांचक मुकाबले में हराकर जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है.
2: दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता, जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी. इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा. तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया. उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा. पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में हैं, जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का. नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया. लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने ये दिखाया कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है.
3: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से. और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी.
2: हालांकि जैवलिन थ्रो में कॉम्पिटिशन भी उतना ही तीव्र है. नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे. दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे, जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे. ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत, जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था.
1: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्रीशंकर. बर्मिंगम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था, लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स मिस करना पड़ा था. लेकिन मुरली श्रीशंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है.
2: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.31 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं.
1: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर. हाई जंप में भारत का पहला मेडल 2022 बर्मिंगम में इन्होंने जिताया था
2: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे. वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर, प्रवीण चित्रवेल, जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 4th स्थान पर आए थे, यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे. 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी, जिसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं. क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे? वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर.
1: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा. महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर. 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी.
2: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर और 5,000 मीटर, वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन हैं, अपनी दावेदारी पेश करेंगे.
1: अब बात प्रियंका गोस्वामी की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था.
2: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी.
1: शॉर्ट पुट में 2 बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे.
2: ये तो बात रही एथलेटिक्स की, अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का.
1: मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड

0: चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
1: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
0: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरेंगे। इस साल इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में रजत पदक जीता था और इस प्रदर्शन को दोहराने की पूरी कोशिश रहेगी।
1: पुरुषों की मुक्केबाजी में अंकुश, नरेंद्र, सचिन, सुमित और कपिल पोखरिया से भी अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा है और बता रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह।
2: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
0: अब बात करते हैं स्विमिंग की। 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्विमिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे।
1: इनके अलावा नजरें होंगी श्री हरि नटराज पर, जिन्होंने 2019 में काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे।
0: वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
1: अब बात कर लेते हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई को होने वाले इवेंट्स की। भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे द अरीना में पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
0: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा पैरा स्विमिंग मेंस S13 100 मीटर फ्री स्टाइल, जहाँ दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
1: पुरुषों के 50 मीटर बैकस्ट्रोक में श्री हरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
0: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परमजीत कुमार नजर आएंगे।
1: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे। ये तो बात रही लाइट वेट कैटेगरी की। हैवी वेट कैटेगरी में महिलाओं में कस्तूरी राजमणि और पुरुषों में सुधीर और झंडू कुमार नजर आएंगे।
0: बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह स्कॉटलैंड के एरन किलन से मुकाबला करते नजर आएंगे रात 11 बजे।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 खिलाड़ी 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ पदकों की गिनती होगी, वहां भारत अपने खिलाड़ियों के साहस, संकल्प और सपनों की कहानी भी लिखेगा। हर जीत तिरंगे का मान बढ़ाएगी, हर चुनौती नए विश्वास को जन्म देगी और जब खेलों का ये महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब उम्मीद यही होगी कि दुनिया भारत की उपलब्धियों को याद रखे, तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए और राष्ट्रगान की गूंज हर भारतीय के हृदय में गर्व का एक नया इतिहास लिख जाए। आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
3: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स कॉमनवेल्थ गेम्स यानी दैनिक झलकियां कॉमनवेल्थ गेम्स की दर्पण टिरकिया और प्रेरणा शर्मा की आवाज में।
4: திருச்சி வானொலி அலைவரிசைகளில் இதுவரை நாம் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் தினசரி நிகழ்வுகளை கேட்டோம். திருச்சி வானொலி அலைவரிசைகளில் இனி நாம் கேட்டு ரசிக்கவிருப்பது போடு ஆட்டம் போடு.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: கேட்டிணைஞ்சிருக்கோம், இது திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 மனதி மயக்கும் மதுர கீதம். அடுத்ததா பாடல் வருது ஆனந்த ஜோதி திரைப்படத்திலிருந்து, கண்ணதாசன் வரிகளில் விஸ்வநாதன் மற்றும் ராமமூர்த்தி இசையமைத்த பாடல். பாடலுக்கு விருப்பம் தெரிவிச்சிருக்கிற நேயர்கள் அன்வர்த்திகான் பேட்டை, அருணகிரி, கீதா.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: திருச்சி எஃப்எம் ரெயின்போ 102.1 நாளைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் வழங்குவோர் திருச்சி மா காவேரி மருத்துவமனை.
4: ஜூலை 25 உலக IVF தினத்தை முன்னிட்டு அக்கறையுடன் மா காவேரி மருத்துவமனை திருச்சி.
5: இரவின் நிழலில் இளைப்பாறும் நேரம் இது, இனிய ராகம்.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जान